सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। तुर की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबान।

चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे भुंगे जुगो जुग अटल

सहस मूर नन्ना एक तो ही। सहस पद बिम्बल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंधेव चलत मोहि सब मह जो जोत है सोहे तिसद चानना सब मह चानन होए गुर सागी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकर अंध लोभित मनो अंधन मोहे आहि प्यासा कृपा जल देह नानक सार रंग कोय जय तरनै वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोध नगर्भ भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर नौत पुन वड्डा हे रहाव साकत हर साधन जाणिया तिन अंतर हुमै कंडा हे ज्यों ज्यों चलै चुपै दुख पाव है जमकाल सहसर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मासकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा हे जन नानक नाम धार टेकर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां करहो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा खार चलो हर लाह आगे बसन सोहेला औध कटै दिन सर नारी मान गुर मिल काज सुहारे रहाउ एहो संसार विकार संसै मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाय पियावै एहो रस आकाश कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजोर गुरते मन हे बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मंगै मुख कर संतन की थूरे अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मंगै मुख कर संतन की थूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: देख तेग, देख तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे लागते दीवान रहे
1: एक चीज कर लो
0: बोले सो निहाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

में दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसा हो कुरसा हो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साफ मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पाते साहु सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोहिया

पाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेच मल भख खाहे। असंख निंदक सिर कर है भार नानक नीच कह विचार। वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह। असंख कह है सिर भार होए। अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह। अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे। जेता कीता तेता नाओ बिन नावै नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह। मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए। भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्या मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल नहाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार। वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण। वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जानै रुत माहो ना कोई जा करता। सिर ठीकाओ साजे आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना। नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपाओ जाने। अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात। सहस अठार है कहन कतिबा असलू एक तात। लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप। सालाही सालाही एती सुरत ना पाईया नदिया अतै वाह। पव है समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान। गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनहो ना विसर है।

ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए। वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगहै जोध अपार केतिया गणत नहीं विचार केते खप तुटह बेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतिया दुख भूख साध मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए। जे को खाए को आखन पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आखह से पे केई के जेसनो बक्से सिफत सालाह। नानक पाते साही पाते साहो अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल पंडार। अमुल आवहै अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान। अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लेब लाए आखह वेद पाठ पुराण। आख है पढ़े कर है वख्यान आख है ब्रह्मे आख है हिंद आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सोर नार मुन जान सेव। केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करेहे। ता आख ना सकह केई के जेवड़ पावै तेवड़ होए।

एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध।

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दी बाण जेव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर न आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस

देखत धाम हूनह जाहे सर्ब मान सर्वतर मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जान ही जिह वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानई केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब विसव रचियो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग न रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकत दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही वह चित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भर नाडै अन डंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने चतर चक्कर वर्ते चतर चक्कर भरते चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे चतर चक्कर मानिया चतर चक्कर दानिया चाचरी छंद ना सत्रै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाए ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरणै के विभूत करणै के राजं प्रभाहै के धर्मं तुजाहै के आशोक वरणै के सर्वा अपरणै के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं।

हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन शुभ राता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छाय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल, सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार, चाओ पई को कहै चाओ पई, संबत सत्तर है सहस पनिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहिजै, भादरव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरस तुदरव ग्रंथ सुधारा, सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरित शास्त्र वेद सबै बहु भेद, कहे हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो, दोहरा

जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखान। ए आख है ता वेख है सब तू है, जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा किन्नी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चुका, सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी। बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार। तज त्रिसना बहुत नाही बोलना, खन्या हो तिखी वाल हो निकी। एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजया। हर वासना समानी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे तिव चलह, जिन्ना मार्ग पाव हे कर कृपा। जिन नाम लाए हे से हर हर सदा ते आव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी, से गुर द्वारे सुख पाव हे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला। सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया। जिन तुरहो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्लां। गल्ली किनै ना पाया, कह नानक शब्द सोहिला सत गुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो, पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजाय, विन सहजाय सहसा ना जाए। नह जाए सहसा किता संजम, रहे कर्म कमाए। सहसा जियो मलीन है, सहसा जियो मलीन है। कित संजम धोता जाए, मन धो बहो शब्द लागहो। हार स्यो रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाय। एह सहसा एव जाए, जियहु मैले बहरहु निर्मल। बहरहु निर्मल जियहु ता मैले, तिनि जन्म जुवै हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहु विसारिया। वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहै नाही, फिर है ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया। जियहु निर्मल बहरहु निर्मल, बहरहु ता निर्मल जियहु निर्मल। सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ के सोए पहुचै नाही। मनसा सच समानी, जन्म रतन जिनी खटिया। भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल। सदा रह है गुर नाले, जे को सिख गुरु सेती। सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई। जिया हो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदै त्याए। अंतर आत्मै समाले, आप छड सदा रह परनै। गुर बिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनहो संत हो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई। पुछो हो बिबेकिया जाए, अनेक जूनी भरम आवै। बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी। सतगुरु शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखा हो। बिन सतगुर मुक्त ना पाए, आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावहो सच्ची बाणी, बाणी ता गावहो गुरु केरी। बाणिया सिर बाणी, जिन कौ नदर कर्म होवै। हिरदय तिना समाणी, पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग।
जपे हो सारिग पाणी, कहे नानक सदा गावहु एह सची बाणी। सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी, हर हर नित कर है रसना। कहया कछु ना जानी, चित जिन का हिर लया, माया बोलन पै रवाणी। कह नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लाया भाओ, आपे हीरा रतन आपे। जिसनो दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाए, कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै, गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै, एकस सेव लिव लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरित शास्त्र पुन पाप बिचार दे, तत्तै सार ना जानी, तत्तै सार ना जानी। गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैन विहानी। गुर किरपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया। बोला है अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए। जिसनो आन दिन हार लिव लागै, जागत रैन विहानी। माता के उदर मह प्रतपाल, करे सो क्यों मनहो विसारिया। मनहो क्यों विसारिया, एवड दाता जे अगन मह आहार पहुचावे। ओस नो केहो पोहे ना सकी, जिस नो अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभालिया, कह नानक एवड दाता, सो क्यों मनहो विसारिया। जैसी अगन उदर मह, तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही। करता खेल रचाया, जा तिस भाणा ता जमया, परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए। किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनो सिर सौपिया, विच हो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै, हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा। सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जपिहो जियाहो, लाहा खटिहो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे भाणा। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा। ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए। होरत किता जिचर हर रस पलै ना पाए, हर रस पाए पलै पिया। हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया, हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया।
मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापाए गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापाए अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भुगो कह नानक प्रभ आप मिलिया करन कारण जुग ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हार तेरा रचन रचिया सो हार मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूरब लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यो चित लाया ए नित रहो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर ना देखो हो कोई हर बिन अवर ना देखो हो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो साचा सुनना नो पठाए साचा सुनना नो पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र होवहो।

ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया, कछ आरा पार ना सूज, सगल भवन के नायका, एक छिन दर्स दिखाए जी, मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए।

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम न सुनना करना जीओ नाभ चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिते दिल दी धड़कन है उत्थे सुन सकते हो कंठ चक्कर जिते गले चो आवाज आउंदी है उत्थे सुन सकते हो जिन्हां गुरमुखां नूं नाम नहीं सुनदा उन्हां ने सास ग्रास सिमरन विच ध्यान रखना जीओ सास सुंदर नूं जांदा वाहे फील करना श्वास वार नूं आउंदा गुरु फील करना एक दो मिनट वास्ते आपां अंतरगत होके सिमरन करना नेत्र बंद रखने जीओ उस तो उपरंत फिर आपां रसना नाल जपांगे किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लेके जाना जीओ।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाजरा हजूर, जहरा जहूर, सर्व कला भरपूर, गुरता गद्दी ते विराजमान, पावन तख्त साहिब जी विखे प्रकाशमान, भगत वशल कृपा निदान जगत गुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सजे हुए अमृत वेले दे पावन दरबार अंदर, गुरुद्वारा दशमेश कल्चर सेंटर जी दे पावन अस्थाना ते हाजरियां भर रहे जुड़ बैठे सतसंगी जनों, गुरमुख प्यारियो, अमृत वेले की संभाल करदिया होया इशनान पानी करके तैयार पर तैयार होके दूरों नेड़ियों चल के गुरु चरणा विच जुड़ बैठ करके गुरु सवारे सन्मान जो गुरु के कीर्तनियां पासों गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणिया भाई गुरदयाल सिंह जी तिन्हां दे कीर्तनी जथे पासों आप जी ने पावन बाणी श्री आसा की वार दे कीर्तन दे लाहे प्राप्त किए ने उपरंत समा होया है पावन बाणी की जो लड़ी वार कथा विचार चल रही है उस लड़ी तहत उस मर्यादा तहत आप जी ने अज का पावन उपदेश उदा मूल पाठ सरवण किया है जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग नंबर 267 के उपर

जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मिला प्रभु हर दरगह का बसीठ हर नामो मंत्र दृढ़ाई दा कटै होमै रोग नानक सतगुरु तिन्ना मिलाया जिन्ना धुरे पया संयोग सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहु सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला नामा जो नार दुख मैं दुख नहीं माना सुख स्नेहो अर भय नहीं जाका कंचन माटी माना

पर वृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो।

तेरी तुम मात पिता बारिक तुमरी कृपा मैं सुख कोई ना जानी तुमरा उचे ते उचा सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते हो सो आग्या तुमरी गात मेत तुम ही नानक दास सदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एको ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लईं ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद समराओ श्री हर आए श्री हर किशन ते आईया जस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवै ताई सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहेगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां थप्पियां जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तन्हा प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां संग निभाही तनहां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कहो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चिते आवै चेता मन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पै पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मरनीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तनहां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मां निताणियां दे तां नियोटियां दी ओट धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास है जी। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे शुभ आनंद का लड़का पाई करण कुमार पिता अशोक कुमार अते माता रणजीत कौर लड़की बीबा अमरजीत कौर सपुत्री अरविंदर सिंह अते माता मनजीत राणी तिन्हां दा शुभ आनंद कारज आप जी की हजूरी अंदर गुरमर्यादा अनुसार संपूर्ण होए ऐ समय लावां दा पाठ करदियां कीर्तन करदियां सेवा करदियां बेअंत फुलां बख्श देना सुभाग परिजोड़ी दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना अंग संघ होके सहायता करनी दुखां दलिद्रां दे नाश करने सुखां दे प्रवेश करने चढ़दियां कलां बख्शनियां परस्पर प्यार इतफाक दी दात नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शना दोनों ही परिवारां वल्लों आप जी नूं सुंदर पछाकी अंगीकार कराए सेवकां दे लोक पर लोक पड़दे टकने सेवकां दीआं सेवावां पिटावां दर प्रवान करनियां आईया संगतां दीआं हाजरियां पेटा प्रवान करनियां अमृत बाणी दा भाव संगतां ते सुभाग परिजोड़ी दे हिरदे विच वसाउणा आप जी दे हजूर छे पौड़ियां आनंद साहिब बाणी दी अरदास कड़ा प्रशादी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रशाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे
ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਰਾਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋ ਚਾਹ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰਹੀ।

अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसें गुरु का जन्म मरण दुख जाई हुआ सिपत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठा सचे पादशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पादशाह सिर शहांदा साहू जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहू जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजमा अवनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन का बर्तन बिरला पावै कोई अबनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन का बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई

ताहे ताहे उसारे आपे हुक्म सवार नहारो। जो तिस भावै समरथ सो थीऐ हीलड़ा एहो संसारो। नानक रुना बाबा जानिए जे रोवै लाए प्यारो। वाले वे कारण बाबा रोईऐ रोवण सगल बिकारो। रोवण सगल बिकारो गाफल संसारो। माया कारण रोवै चंगा मंदा किश सूझै नाही। एहो तन एवै खोवै एथे आया सब को जासी।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के हजूर अरदास है जी। आप जी का वचन है, जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कले।

बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त उदोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों औद विहाणियां। शेख हयाती जग ना कोई थिर रहया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। आपे हर एक रंग है आपे बोरंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस सहज सुभाए।

सहजे जागे सहजे सोवे गुरमुख अन दिन उस्तत होवे मनमुख भरमे सहसा होवे अंतर चिंता नींद ना सोवे।

जब उत्कर्ष करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब।

कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तव शरण।